0: அப்படியே ரைமிங்கா பாடிட்டே இருக்க ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்.
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: உங்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியோட நேரத்தனுக்கு வந்தாச்சு. சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நேரம் 1:54:33 மணித்துளிகளில் நிறைவாக வரக்கூடிய பாடல் கல்லூரி திரைப்படத்திற்காக.